प्यारे भाई, अकोड़ा खटक बाजार के वाहिद कॉस्मेटिक सरा, जिया कॉस्मेटिक सरा, न्यू फ्रेंड्स, नेहार अली कॉस्मेटिक सरा, दानिश कॉस्मेटिक सरा, नवीद कॉस्मेटिक सरा, सासुदा इश्मा, तमाम प्रोडक्ट अवेलेबल दी एंड दस्ते।

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है, ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है, ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुमैल डीआई खान से। चंद अरसा पहले मैंने टिकटॉक पे एक राइस फेस वॉश देखा था जिसको मैं ऑनलाइन मंगवाती थी, मगर इसका रेट बहुत ही ज़्यादा हाई था। फिर मुझे किसी ने इश्मा राइस फेस वॉश का मशवरा दिया। इसी वक्त से लेकर आज तक मैं इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सब बहन भाइयों को यही मशवरा देती हूँ कि इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल करें, ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी कीमत जो है वो 350 रुपए है और डीआई खान और मुख्तलिफ केपीके के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है। स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और आयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342-311-2292 पर

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
3: तासोरे रेडियो अमन 88.4 टांग रेडियो अमन जीत की लगन।

जी जनाब, हर रोज की तरह आज भी आपके साथ बिल्कुल जी मौजूद हैं और केसर नेशनल पाकिस्तान का ये एक नया एपिसोड, एक नया प्रोग्राम। कल जनाब कुछ मसरूफियत की वजह से जनाब आप लोगों के साथ लाइव शो नहीं हो सका, क्योंकि जनाब हम भी इंसान हैं और हमारी भी बहुत सारी कभी कभी मसरूफियात ऐसी आ जाती हैं कि फिर से वापस अपने स्टूडियो तक एक ही दिन के अंदर पहुंचना बाज़ वक़्त मुश्किल हो जाता है। तो जनाब जब मजबूरी होती है तभी जनाब आप लोगों की समातों की नज़र हम अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन भरपूर कोशिश होती है कि जब तकाजा ना हो, कोई मजबूरी ना हो, तो बग़ैर मजबूरी की छुट्टी ना की जाए। क्योंकि जनाब आपसे ज़्यादा लॉस जो है मुझे होता है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन रेडियो स्टेशन के ऊपर एक साथ हमारा ये एक घंटे का लाइव शो होता है, तो हम सफ़र भी होते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाए तो फिर हमारी छुट्टी बनती है। तो जनाब कल के लिए माज़रत, जो आप लोग लाइव हमारा प्रोग्राम नहीं सुन पाए, लेकिन आज 16 जून लाइव प्रोग्राम का हिस्सा भी आप मान पाएंगे। हमारे शो के अंदर आप कॉल भी कर सकते हैं और आपके पास नंबर तो वैसे अभी सेव हो चुका होगा, आपने हमारे दोनों नंबर अपने पास सेव कर लिए होंगे। एक हमारा जोंग का नंबर है और एक टेलनॉर का नंबर है, जिसके ऊपर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, हमें SMS कर सकते हैं, और किसी वक्त अगर आपको कुछ ज़्यादा जो है हिदायत चाहिए हो तो इन्हीं नंबर के व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो पहला नंबर हमारा जो टेलनॉर का है, जो आप लोग अक्सर हमें इस नंबर पर ही रब्ता करते हैं, 03444-9363-66, 03-944-936-3366। ठीक है जनाब, ये हमारा एक नंबर है, एक दफा फिर से 03-944-9363-66, और इसके साथ हमारा जोन का नंबर 03-313-798-4545। जी सामिन कराम, कैसे ना जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की एक लंबी फहरिस्त है, जो आप लोग जान चुके होंगे कि कैसे ना आप लोगों के लिए कौन सी प्रोडक्ट बना रही है। ये जनाब कोशिश करते हैं कि आपकी हर एक फिक्र जो हमारे बस में है, हम रब की बनाए हुए जो है नेमते हैं उनके सामने पेश कर सकें प्रोडक्ट्स की सूरत में, और उन्हें इस्तेमाल करके आप अपनी तमाम तर फिक्रों से आज़ाद हो सकें जो आपकी स्किन केयर के हवाले से हैं, हेयर केयर के हवाले से हैं, या फिर पेन मैनेजमेंट के हवाले से हैं।

0: जी जनाब, आप लोगों की वैसे कॉल्स हम इतने जल्दी लेते होते नहीं हैं, लेकिन जनाब पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ स्टार्ट में आ चुके हैं, तो जनाब इनको वापस नहीं लुटाते, इनकी कॉल को बाउंस नहीं करते, और देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे अपना मोहतरम?
1: मोहम्मद इस्माइल।
0: मोहम्मद इस्माइल कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन सा एफएम सुन रहे हैं, डेरा टांग या फिर पहाड़पुर?
1: पहाड़पुर।
0: पहाड़पुर रेडियो पैगाम को सुन रहे हैं, कैसे हैं मोहतरम?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या काम करते हैं भाई? वैसे मैं आपसे ये सवाल अक्सर लोगों से करता नहीं हूँ, लेकिन आपसे मेरा दिल कर रहा है कि पूछ लूं कि क्या करते हैं भाई?
1: अभी तक तो कॉलेज पढ़ रहा था, अभी छोड़ दिया।
0: अच्छा, स्टूडेंट हैं आप यानी के? अच्छा जी, अभी काम धंधे के पीछे पड़ गए हैं जी, कारोबार करने लगे हैं। क्यों, क्या लगता है कि नौकरी नहीं मिलेगी पाकिस्तान में, जितनी भी बड़ी डिग्री ले लें?
1: नौकरी मुश्किल है जब तक लक्ष्मी ना हो ना।
0: अच्छा जी, लक्ष्मी तो बिजनेस के लिए तो डबल लक्ष्मी चाहिए होती है आपको। अच्छा, आप कहते हैं कि कारोबार 50,000 भी आ जाएंगे तो मैं शुरू कर लूंगा, लेकिन लक्ष्मी के लिए 7-8 लाख रुपए पहले देने पड़ते हैं सरकार को, तब जाके नौकरी लगती है।
1: फिर भी नौकरी है ना, जिसकी नौकरी ना हो फिर तो नौकरी का होगा।
0: नौकरी तो आपकी सोच माशाल्लाह बहुत अच्छी है, नौकरी का नाम ही नौकरी है कि आपने किसी की मुलाजिम बनना है, किसी का गुलाम बनना है, अपने वक्त का पाबंद होना है आपने।
1: जी
0: तो अच्छी सोच है आपकी माशाल्लाह, और कारोबार में अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा बरकत डाली है। आप यकीन कीजिए, एक छोटा सा कारोबार भी आपका होगा ना, पूरे 30 दिन आप किसी से कर्जा नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपकी 1 लाख रुपए नौकरी भी होगी ना, 1 लाख तनख्वाह भी होगी ना, आखिरी 5 दिन के अंदर आप किसी से कर्जा मांग रहे होंगे कि आखिरी 5 दिन कैसे गुजरेंगे। तो भाई की बड़ी अच्छी सोच है, बिजनेस की तरफ आ रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, लेकिन कारोबार इतना आसान नहीं होता, बड़े धचके मिलते हैं और इंसान फिर से डिसअपॉइंट भी होता है। तो कारोबार अगर शुरू करने लगे हो भाई तो 3 साल तक तो बिल्कुल भी ऐसे रहना कि तुमने कुछ नहीं कमाना, ठीक है? कहते हैं कि 3 साल जो बंदा कारोबार में गुजार लेता है ना, 3 साल तो चौथा साल उसका होता है, लेकिन हम में से अक्सर लोग 1 साल में गिर जाते हैं, दूसरे साल में गिर जाते हैं, 3 साल तक कोई पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है जनाब? 3 साल से पहले ही लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप 3 साल तक एक कारोबार लेकर जाते हैं तो फिर आगे चौथा साल जो होता है ना, वो आपका होता है, कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई आपको नाकाम नहीं कर सकता। तो क्या कहना चाहेंगे भाई, प्रोग्राम सुन रहे थे हमारा और आते ही आपने चाय की प्याली मिली है आपको, चाय का कप मिला है आपको, अभी तक चाय नहीं पी क्योंकि ये केसन का टी टाइम है। इस टाइम नहीं पीते आप चाय? अच्छा चलो, अच्छी बात। क्या कहना चाहेंगे, कॉल करने की वजह क्या बनी आखिर आपकी? मेरा हाल तो बिल्कुल ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त हूँ, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है। मैंने कहा किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे, आप कुछ लेना चाह रहे हैं या आपने कुछ लिया और उससे फायदा हुआ नहीं हुआ, मैंने कहा शायद इस तरह का कोई हमारा यूजर हो। अच्छा चलो, प्रोग्राम सुने भाई मेरे, फिर सोचिएगा कि केसन ने आपके लिए क्या बनाया है, ठीक हो गया? थैंक यू सो वेरी मच जी। हर बंदे के लिए केसन ने चीजें बनाई हुई। उस दिन एक फीमेल हमारे पास आई हुई थी, शायद इस वक्त वो सुन रही हूँ, जफराबाद से उनका ताल्लुक था, और केसन शॉप पर जब आई हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने खरीदी हैं, और कहा कि भाई वो लवली क्रीम नहीं है। जी, मुझे हंसी भी आई, फिर मैं चुप भी हो गया। मैंने कहा क्या ये तो सीरियस सवाल है इनका कि लवली क्रीम नहीं है। हंसा मैं दिली दिली में, इसलिए था कि मैंने कहा हमारी प्रोडक्ट जितने भी हमने बनाई है ना माशाल्लाह, किसी एक के लिए वो इतने फायदा मंद है कि भाई अगर वो किसी वजह से लोगों को ना मिले ना, वो उसे ढूंढते फिर रहे होते हैं। तो अब लवली क्रीम हमारी जो है, एक हमने एक डे टाइम क्रीम थी, फेयरनेस क्रीम थी, उसकी प्रोडक्शन हमने रोक दी क्योंकि हमने ग्लूटावाइट क्रीम बना ली थी। जो ग्लूटावाइट क्रीम है वो भी डे एंड नाइट क्रीम है, ठीक है जनाब? तो अगर आप दिन के वक्त उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो फेयरनेस क्रीम का काम करती है। तो वो बहन कह रही थी नहीं भाई, उस क्रीम ने ना मुझे बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट दिए, वो जो आपकी लवली क्रीम थी ना, जो आपने फेयरनेस क्रीम बनाई हुई थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी, अब वो क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा अब चूँकि ग्लूटा आ गई है तो दो दो क्रीमें इकट्ठे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन सी खरीदें कौन सी ना खरीदें। सो हमने फिर, वो कह रही थी कि नहीं भाई वो अगर होती ना तो मैं ज़रूर लेके जाती क्योंकि उस क्रीम ने। तो केसन के हर प्रोडक्ट के अंदर इतनी जान है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर वो बंद होती है ना तो लोग यकीन करें फिर चिराग लेके ढूंढ रहे होते हैं कि ये कहाँ से मिलेगी। जैसे मैं आपको उक्तन साबन का बता रहा था उस दिन कि हमने कुछ अरसे के लिए इसको रोका क्योंकि जाफरानी आ गया था, लेकिन लोग कह रहे नहीं हमें भी वही चाहिए, उक्तन वाला ही चाहिए। यानी कि हर बंदे की अपनी स्किन है और उसकी स्किन के मुताबिक ही केसर ने प्रोडक्ट बनाया। इसी वजह इसलिए हम कहते हैं कि भाई आप हर एक के लिए केसर ने अलग से प्रोडक्ट बनाया। लेकिन आप एक प्रोडक्ट बनाकर ये नहीं बोल दिया कि पूरी दुनिया इसके पीछे लग जाओ, नहीं भाई, आप लोगों को वैरायटी हमने दी है और केसर जो है वो वैरायटियों वाली कंपनी है कि आप लोगों को इतने ऑप्शन आप लोगों के पास होते हैं कि आप अपनी स्किन के मुताबिक किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वाइटनिंग के लिए आप लोगों के पास ज़ाफरानी क्रीम भी है, ज़ाफरानी साबुन भी है, ठीक है जनाब। ये बहुत बड़ी प्रोडक्ट है हमारी, केसन नाइट क्रीम इसको कहते हैं। 320 रुपए की क्रीम है, 250 रुपए का साबुन है, ठीक है जनाब। और ज़बरदस्त किस्म के इंग्रेडिएंट्स जो हैं जैसे कि ज़ाफरान है, जैसे कि हल्दी है, ठीक है जनाब, जैसे कि संदल है, इससे बनाया गया। क्रीम के अंदर संदल और हल्दी नहीं है, ठीक है जनाब। जो केसन ज़ाफरानी क्रीम है ना, उसके अंदर हल्दी और संदल नहीं है, उसके अंदर सिर्फ ज़ाफरान है। लेकिन जो साबुन है ना हमारा केसन का ज़ाफरानी, उसके अंदर हल्दी भी है, उसके अंदर संदल का पाउडर भी है और उसके अंदर ज़ाफरान भी है, ठीक हो गया जना। तो ये तीन चीज़ें जो है इनको हम बोलते ज़ाफरानी है, लेकिन क्रीम और साबुन की फार्मूलेशन मुख्तलिफ है। गर्मी के दिन है तो स्पेशली हम ये कहते हैं कि ये फार्मूला बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है जो कि आपके स्किन की ठंडक के लिए, स्पेशली हम ज़ाफरानी जब साबुन की बात करते हैं तो उसके अंदर चूँकि संदल है वो कूलिंग का सेंसेशन आपको देता है, उसके साथ साथ जो है स्किन को ठंडा रखता है, उसके साथ साथ हल्दी है वो इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, और इससे ज़ाफरान है जो कि स्किन वाइटिंग और ब्राइटिंग का काम करता है। और ज़ाफरान से बनी प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करते हैं और अगर आप धूप से होकर आए हैं तो धूप ने आपकी स्किन को जितना जलाया होता है, जितना जलाया होता है वो फिर से ठीक हो जाती है। ज़ाफरान का ये मैजिक होता है। लेकिन आपको वाइटनिंग के लिए आप लोगों के पास वैरायटी मौजूद है, ठीक है जनाब। आप चाहें तो ज़ाफरानी साबुन और ज़ाफरानी क्रीम केसन के इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें यानी कि जो ज़ाफरानी फार्मूला है वो कदीमी फार्मूला है, कदीमी बोलते हैं बहुत पुरानी तहजीबों का और पुराने वक्तों का जो है। अगर आपका इंटरेस्ट इसी चीज़ के ऊपर है कि नहीं भाई जो नेचर चीज़ें होती हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं, वो कितनी ज़बरदस्त होती हैं, वो सेफ़ होती हैं, तो आप लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है केसन नाइट क्रीम और सोप का जो कि ज़ाफरानी फार्मूला है। और दूसरा हमारा लेटेस्ट फार्मूला जो कि इस सदी का फार्मूला है, इस सदी का क्या बल्कि पिछले 2-3 सालों का फार्मूला है, और वो है ग्लूटाथियोन फार्मूला, ठीक है जनाब। ग्लूटाथियोन बहुत ही प्यारी चीज़ है। अब तक बहुत अरसा पहले तक इसको सिर्फ जो है इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये जो आप सुनते होंगे कि भाई वाइटनिंग का इंजेक्शन, वाइटनिंग के कैप्सूल, ये सारी चीज़ें बहुत अरसा पहले बहुत ज़्यादा आम थी। आपने पिछले 10-12-15 सालों में ये बातें सुनी होंगी कि भाई कोई वाइटनिंग के इंजेक्शन भी आ गए हैं, वाइटनिंग के ड्रिप भी आ गए हैं, तो उनके अंदर क्या इस्तेमाल होता है? ग्लूटाथियोन इस्तेमाल होता है, ठीक है जनाब। ये एक इंग्रेडिएंट है जो इंजेक्शन में होता है, जो आपके रगों में जाकर आपकी स्किन को वाइट करता है, वो मुकम्मल तौर पर आपकी स्किन का कलर वाइट हो जाता है ग्लूटाथियोन के। इसकी टैबलेट भी मिलती हैं, इसके इंजेक्शन भी होते हैं, इनके कैप्सूल भी होते हैं, अब इनकी ड्रिप्स भी आ गई हैं। लेकिन पिछले 3-4 साल के अंदर कॉस्मेटोलॉजी में, कॉस्मेटिक्स की दुनिया में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और डेवलपमेंट ये हुई है कि ये जो ग्लूटाथियोन है इसका नेचुरल सोर्स लेकर, इनका नेचुरल सोर्स लेकर जो है इनको अब इस्तेमाल किया जा रहा है कॉस्मेटिक्स की दुनिया में, और इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट सामने आए। इसके जिन जिन लोगों ने ग्लूटाथियोन से बनी हुई क्रीमें इस्तेमाल की, फेस वॉश इस्तेमाल किए या फिर सोप्स इस्तेमाल किए, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिले। स्पेशली जब बात करते हैं हम वाइटनिंग की, जब हम बात करते हैं ब्राइटनेस की, जैसे मैं आपको कह रहा ना बहुत अरसे पहले तक लोग ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन और ये लगाते रहे हैं, लेकिन अब जो डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट ये है कि भाई इसी को आप एज ए नेचुरल सोर्स आप सोप्स के अंदर, आप क्रीम के अंदर, आप फेस वॉशेस के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। FDA ने अप्रूव कर दिया कि भाई आप ये इस्तेमाल करवाएं, इनके बहुत ही अमेजिंग किस्म के रिजल्ट हैं। तो बहुत सारी कंपनियों ने इसको बनाना शुरू कर दिया। तो भाई जब बहुत सारी कंपनियां बना रही थी तो आपकी अपनी कंपनी केसन कैसे पीछे रह सकती है? अगर आपके पास अभी टिकटॉक है, सोशल मीडिया है, तो अभी आप ग्लूटा वाइट लिखेंगे या ग्लूटाथियोन लिखेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे भाई कितनी ढेर सारी कंपनियाँ ये फार्मूला बना रही हैं। तो वाई दिस गोलावरी जी, क्यों बना रही हैं आखिर?

जनाब परमानेंट वाइटनिंग, एक होती है वाइटनिंग के लोगों ने क्रीमें, विटामिन सी से बनी हुई क्रीम, अल्फा आर्बुटिन से बनी हुई क्रीम, कोजिक एसिड से बनी हुई क्रीम, लिकोराइस से बनी हुई क्रीम को इस्तेमाल किया तो उनको वाइटनिंग मिल गई, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर से रंगत जो है सांवली होना शुरू हो गई, यानी कि फिर से आपकी रंगत जो है वो स्याही माइल होने लगी। तो उसका सलूशन आया ये आप लोगों के लिए केसन ग्लूटावाइट की सूरत में या ग्लूटाथियोन की सूरत में, और केसन ने भी इसको एक मुकम्मल रेंज लॉन्च की। ये जो ग्लूटाथियोन है केसन नेचुरल पाकिस्तान वाहिद कंपनी है, ये एजाज हमें हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह कि ग्लूटाथियोन फार्मूले के अंदर तीनों के तीनों प्रोडक्ट हमारे पास हैं। यानी कि कोई कंपनी सिर्फ ग्लूटावाइट की क्रीम बना रही है, कोई सिर्फ फेस वॉश बना रही है, कोई सिर्फ साबुन बना रही है, या कोई क्रीम और फेस वॉश बना रहे हैं, ठीक है जनाब, इस तरह के, लेकिन किसी भी कंपनी के तीनों चीजें एक साथ नहीं है, ठीक है जनाब। तीनों चीजें यानी कि साबुन भी उसी कंपनी का हो, ग्लूटावाइट का फेस वॉश भी हो और क्रीम भी हो। तो ये फर्स्ट टाइम है जनाब के केसर नेचुरल पाकिस्तान ने आप लोगों के लिए ये रेंज मुकम्मल लॉन्च की है, ठीक है जनाब। यानी कि इसके अंदर ग्लूटाथियोन से बना हुआ साबुन भी है आप लोगों के लिए, आप स्किन को व्हाइट एंड ब्राइट कर सकते हैं, फेस वॉश भी है और डे एंड नाइट क्रीम भी है। बहुत ही प्यारी ये हमारी रेंज है, और ये रेंज जब लॉन्च हमने की थी तो इसके ऊपर हमने बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की थी, और हमने पूरे केसन सेटअप को सजाया था, उसमें बहुत सारे मेहमान आए थे और लोगों को बताया था कि भाई फर्स्ट टाइम जो है कोई कंपनी तीनों चीज़ें एक साथ लेके आई है कि ग्लूटाथियोन का सोप, ग्लूटाथियोन का फेस वॉश और ग्लूटाथियोन की डे एंड नाइट क्रीम है। बेसिकली इसका काम आपके स्किन की ब्राइटनेस को बढ़ाना होता है, ठीक है जनाब। आप जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, चाहे फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे, चाहे क्रीम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जनाब, वो आपकी स्किन ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे। अच्छा जी, उसके साथ जो है कुछ और इंग्रेडिएंट जो बहुत ही ज़रूरी हैं, बेसिकली तो इसका काम स्किन ब्राइटनेस को बढ़ाना होता है, लेकिन कुछ लोगों का ये मसला भी होता है कि भाई उनको दाग धब्बे भी होते हैं, छाइयाँ भी होते हैं, तो यही वजह है कि इसके अंदर एक्टिव इन्ग्रीडियंट विटामिन सी को ऐड किया गया है और हाइलुरोनिक एसिड को भी शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही प्यारी फार्मूलेशन है हमारी, और जब से हमने ये क्रीम लॉन्च की है ना केसन की ग्लूटावाइट क्रीम, मुझे याद नहीं है कि कोई हमारी बहन या भाई ये क्रीम लेके गया हो और उसके बाद उसने कहा हो कि नहीं बस ये हमने ट्राई कर ली है, हमें वही केसन ज़फरानी क्रीम दे दें, या बस हमने इसको छोड़ दिया। यानी कि जो भी लेके गया फिर उसके बाद वो रिपीटेडली हमसे ख़रीद रहा है, रिपीटेडली वो हमसे ले रहा है, क्योंकि जनाब इस क्रीम के बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हैं, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड और ग्लूटाथियोन के साथ बनी हुई है। आपका इलाका जनाब चाहे डेरा इस्माइल खान है, चाहे पहाड़पुर है, या फिर डेरा इस्माइल टांक है, ये क्रीम, ये साबुन, ये फेस वॉश आपके इलाके में हर जगह मौजूद है, ठीक है जनाब। आप जिस भी दुकानदार के पास जाएंगे, यानी कि अगर आप इस वक्त जो है डेरा इस्माइल खान में मौजूद हैं, तो डेरा इस्माइल खान में आपको ये ग्लूटावाइट की क्रीम, केसन ग्लूटावाइट, ठीक है जनाब, आप जब मार्केट में जाएं तो सिर्फ ग्लूटावाइट आपने नहीं बोलना, जैसे मैंने आपको बोला है ना कि ये इतना पॉपुलर फार्मूला है कि इसको 10-12 कंपनियों ने बनाया हुआ है, तो हर किसी ने नाम क्या रखा हुआ है, ग्लूटावाइट, हर किसी ने ग्लूटावाइट। तो आपने जब, अगर आपको हमारी बातों के ऊपर ट्रस्ट है और आप हमारी ग्लूटाथियोन खरीदना चाहते हैं, हर कंपनी ने ग्लूटाथियोन अपने हिसाब से ऐड किया है, अपने लेवल के मुताबिक ही उसको ऐड किया है, ठीक है जनाब। हर कंपनी अपने तरीके से चीज बनाती है। आप मोहल्ले के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर कितनी दुकानें होंगी दूध की, ठीक है जनाब, लेकिन आप 2-3 दुकानदारों को छोड़कर एक के पास जाते होंगे ना, दूध तो सबके पास है, 10 के 10 जो दूध बेचने वाले बैठे हुए हैं, मोहल्ले जिनको हम कहते हैं, दूध ही बेच रहे हैं ना, लेकिन आपका ट्रस्ट जिसके ऊपर होगा आप उसी से जाके दूध खरीदेंगे, ठीक है जनाब। आप कहने को तो सबके पास दूध है, आप कहने को तो 8-10 कंपनियों ने ये फार्मूला बनाया हुआ है ग्लूटावाइट का, ठीक है जनाब, लेकिन डेफिनेटली आपको जिस कंपनी के ऊपर एतमाद होगा कि यार इसकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं तो मैं इसी की खरीदूँ, तो जब आप मार्केट में जाएंगे, ठीक है ना, हो सकता है टांग में बहुत सारी दुकानों के ऊपर अभी हमारी केसन की ग्लूटावाइट अवेलेबल ना हुई हो, या डेरा इस्माइल खान में या पहाड़पुर में, लेकिन जब आपने दुकानदार के पास जाना है तो आपने उसको कहना है केसन की जो ग्लूटावाइट है ना वो दें, या फिर आपने खुद देखना है जो केसन की ग्लूटावाइट क्रीम है ना जनाब, उसके 2 कलर है, रेड और वाइट, किसी भी ग्लूटावाइट क्रीम की ये कलर नहीं है, ठीक है जनाब। अक्सर जो ग्लूटावाइट फार्मूले की क्रीम है ना, उनके 2 कलर होते हैं, ग्रे और वाइट, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ इसी वजह से रखा हुआ है कि भाई
लोग कंफ्यूज ना हो, हमने कलर स्कीम इसकी चेंज की हुई है। इसके ऊपर बड़ा बड़ा व्हाइट, सॉरी रेड कलर में लिखा हुआ है ग्लूटा व्हाइट, और बैकग्राउंड व्हाइट है। तो आपने याद रखना है कि केसन की जो ग्लूटा व्हाइट है उसके ऊपर लड़की की तस्वीर भी बनी हुई है, जिसका आधा चेहरा सांवला है आधा बिल्कुल व्हाइट है, ठीक है जनाब। और दूसरा हमारी जो पैकेजिंग है ये सारे, यानी कि डिजाइन है डब्बी दा या फेस वॉश दा या साबण दा, वो व्हाइट ते रेड है, ठीक है जनाब, सुर्ख ते सफेद, ये सारी पैकेजिंग है जनाब। इस तो समझ के जिले मार्केट ही वैसे, तो पहली गाल है कि तुम आखने केसन की ग्लूटा व्हाइट, ठीक है। अच्छा दूसरा फर्क क्या है जो आपको खुद से पता चल जाएगा। पहली बात तो ये है कि किसी कंपनी का ग्लूटा व्हाइट का सोप आपको नहीं मिलेगा मार्केट में। डेरा, टांग और पहाड़पुर के अंदर अगर ग्लूटा व्हाइट का सोप अगर आपको मिलेगा तो सिर्फ केसन कंपनी का मिलेगा, और वो 250 रुपए का है। एक कंपनी है जिनका मेरे ख्याल में 450 या 500 रुपए का है ये, लेकिन वो डॉक्टर लिखते हैं, वो मेडिकली है, मेडिकल स्टोर के ऊपर मिलेगा, कॉस्मेटिक स्टोर पर आई थिंक आपको नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो ये है कि केसन का जो ग्लूटा व्हाइट सोप है वो 250 रुपए का, ठीक है। अच्छा दूसरा जो फेस वॉश है केसन का वो भी रेड और व्हाइट पैकिंग में है, और ये कितने का है, दूसरी कंपनियों का आपको 550-600 से कम नहीं मिलेगा, किसी भी कंपनी का इससे कम नहीं है। हमारा जो ग्लूटा व्हाइट का फेस वॉश है वो है जनाब 450 रुपए का, जनाब फेस वॉश हमारा 450 रुपए का, केसन का सोप ग्लूटा व्हाइट का वो 250 रुपए का। और अब बात आती है क्रीम के ऊपर कि क्रीम कितने की है, ठीक है जनाब। क्रीम में कंफ्यूजन आपको हो सकती है, शायद हो सकता है आपको 400 रुपए के अंदर जो है ये 450 में दूसरी कंपनी को ग्लूटा व्हाइट मिल जाए, हमारी आपको मिलेगी 350 रुपए की, लेकिन ये जार के अंदर है, जिस तरह बड़ा जार होता है, यानी कि 30 ग्राम की ये क्रीम है। जी जनाब केसन ग्लूटा व्हाइट की पहचान मैंने आपको बता दी है कि आप मार्केट में जाएंगे। केसन ग्लूटा व्हाइट जो है वो सोप, फेस वॉश और क्रीम की सूरत में मौजूद है, कंप्लीट रेंज है जनाब। ऐसा कदम बहुत कम कंपनियां उठाती हैं, इतना ढेर सारा पैसा बहुत कम कंपनियां लगाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आप लोगों को जो चीज़ प्रोवाइड करते हैं अपने पैनल से कंप्लीट प्रोफेशनली, जो आपके डेली स्किन केयर रूटीन में है। अब सोप और फेस वॉश में 200 रुपए का फर्क है, ठीक है जनाब। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी जेब इजाज़त देती है, तो आप फेस वॉश खरीदें, लेकिन अगर आप गुजारा चलाना चाहते हैं, ठीक है जनाब, गुजारा करना चाहते हैं, तो आप केसन का सोप खरीद सकते हैं। आपको ऑलमोस्ट वैसे ही थोड़ा बहुत हाइड्रेशन के इसको लेकर बाकी जो है आपको तकरीबन वही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जो फार्मूलेशन क्रीम की है वही फार्मूलेशन सोप की है, वही फार्मूलेशन हमारे फेस वॉश की है।

जी जनाब, केसन ग्लूटावाइट कंप्लीट रेंज है साबन, फेस वॉश और क्रीम की सूरत में। टांक में अगर आप मौजूद हैं तो जाएंगे जनाब सदाम प्लाजा के अंदर है, क्या नाम है जनाब, मंसूर कॉस्मेटिक स्टोर, वहां पर आप हमारी प्रोडक्ट होलसेल रेट के ऊपर। अच्छा, जितने टांक के लोग सुन रहे हैं ना भाई, जैसे उस दिन शेख अवतार से मोहतरम हमारे मास्टर फतेहुल्ला साहब कह रहे थे कि मैंने वहां से हाजमा कंट्रोल सिरप जो है 125 रुपए का लिया है, तो ये बेसिकली जब हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आपके सामने उठाते हैं ना, तो उससे इतनी जरूर लिया करें रियायत, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ, आम दुकानदारों की बात नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को हम जो है बहुत सारा मार्जिन देते हैं, क्योंकि उसने आगे सप्लाई करनी होती है दुकानदारों को, ठीक है जनाब। तो इनसे कभी भी इनको फिक्स पैसे ना दिया करें, जैसे कि डेरा में हमारी अपनी केसन शॉप है, अगर कोई आपसे पूरे पैसे लेता है ना दिया करें, ठीक है जनाब। उन्हें कहा करें कि भाई आपकी तो मेन शॉप है, होलसेल रेट होना चाहिए। इसी तरीके से अवेश जनरल स्टोर जो कि पहाड़पुर में हमारा सेटअप है, राहत की एजेंसी के सामने, कभी भी पूरे पैसे मत दिया करें, ठीक है जनाब, ढेर सारी रियायत करवाया करें। इसी तरीके से ये तीन दुकानों के नाम बताओ, और मंसूर है जनाब टांग के अंदर सदाम प्लाजा के अंदर, तो इनको कभी भी पूरे पैसे मत दिया करें, ठीक है जनाब। इनसे इनको कहें कि खलील भाई ने कहा है कि आप होलसेल रेट के ऊपर हमें देंगे, ठीक है, वो आपको इंशाल्लाह होलसेल रेट के ऊपर देंगे। तो ये तीन बड़ी दुकानें सेटअप मैंने आपको बता दी है, यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट मिल सकते हैं। टांग के अंदर इमरान जनरल स्टोर, इमरान कॉस्मेटिक सदाम प्लाजा के साथ ही है, उसी के साथ अरबाब जनरल स्टोर है, कॉस्मेटिक स्टोर है, यानी कि सदाम प्लाजा के साथ ये तीन बड़ी दुकानें हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला जनरल स्टोर है, ठीक है जनाब, सिटी कॉस्मेटिक स्टोर है, सिटी जनरल स्टोर है, अयान है, इसके अलावा फैसल गिफ्ट सेंटर है, या फिर टांक ट्रैफिक चौकी के ऊपर है जनाब सैयद नवाज, सैयद बैकर यही नाम है, आप उनसे भी हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अरबाब मेडिकल स्टोर है जनाब, जो हॉस्पिटल है, अस्पताल के बिल्कुल सामने वाली जो दुकान है, अरबाब मेडिकल स्टोर है, वहां पर आपको केसन के प्रोडक्ट मिलेंगे। उसके साथ साथ बिलाल मेडिकल स्टोर है, ये दो स्टोर हैं, टांग की मैं बात कर रहा हूँ, टांग के अंदर अरबाब मेडिकल स्टोर और बिलाल मेडिकल स्टोर, ठीक है जनाब, इनके पास आपको हमारे प्रोडक्ट मिलेंगे। और इसके अलावा छोटी बड़ी दुकानें जितने भी आपके जैसे बिलाल मार्केट के अंदर नसीम कॉस्मेटिक स्टोर जनरल स्टोर है, वहां से भी हासिल कर सकते हैं, ये टांग के लोग हैं, लेकिन आप यहां से हासिल कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं आप हमें जनाब, नौमी मजबूर फेसबुक लाइव के ऊपर भी हमारे साथ फेसबुक लाइव केसन शॉप से आज हमारा पेज एक्टिव है, तो आप यहां से भी हासिल कर सकते हैं। आप लोगों के मैसेजेस भी आए हुए हैं हमारे पास, उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। और हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम अफनान फ्रॉम पहाड़पुर, भाई केसन ऑयल पहाड़पुर में किस जगह नहीं मिला, भाई आप ये सवाल करते कि केसन ऑयल पहाड़पुर में कहाँ नहीं मिलेगा, अब सवाल कर रहे हैं कि भाई केसन ऑयल पहाड़पुर में कहाँ मिलेगा। पहाड़पुर में अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है जी, केसन ऑयल अफनान भाई हर जगह, कोई ऐसी दुकान नहीं होगी कि जहाँ आपको ना मिले, ठीक है ना। अगर आपने रियायती रेटों के ऊपर हमारे प्रोडक्ट खरीदने हैं तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है अवेश जनरल स्टोर, जो पहाड़पुर का डाखाना है ना जनाब, जीपीओ चौक, ठीक है जनाब, जहाँ पर राहत की एजेंसी भी है, वहाँ उनके सामने अवेश जनरल स्टोर, तो आप वहाँ पर जाएंगे तो जनाब आपको वहाँ पर केसन का ऑयल छोटा भी मिलेगा, बड़ा भी मिलेगा। छोटा 430 रुपए का होता है हमारा, ठीक है जनाब, और जो बड़ा है वो 750। साथ में शैम्पू जरूर खरीदिएगा जनाब, जोड़ी बना के ले जाइएगा। जी जनाब, केसन ग्लूटावाइट आपके इलाकों में मौजूद है और आपकी स्किन को एकदम से ब्राइटनेस देने वाली, आपकी स्किन को ब्राइट करने वाली, आपकी स्किन को गोरा करने वाली, और रातों रातों के अंदर जनाब अगर आप अपनी स्किन को गोरा देखना चाहते हैं सांवलेपन से, जितने भी सांवले लड़के हैं या लड़कियां हैं, ठीक है जनाब, मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑफिशियली होना ऐसा चाहिए कि गोरी रंगत के लिए अलग से फार्मूला, जिस तरह हम आपको बताते हैं कि ग्लूटावाइट को आप इस्तेमाल करें, और छाइयों को हटाने के लिए अलग से फार्मूला। वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि जो छाइयों को हटाने का अमल होता है वो बहुत सारा टाइम लेता है और उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग फार्मुलेशन की जरूरत होती है हमेशा, ठीक है जनाब। और जो रंगत का मामला होता है उसमें स्ट्रॉन्ग फार्मूले की इतनी जरूरत नहीं होती है, ठीक है जनाब। जिसको सिर्फ सांवलापन हो, उसके चेहरे के ऊपर कोई दाग धब्बे ना हो और उसकी स्किन छाइयों से पाक हो, सिर्फ उसकी रंगत का मसला है, तो वो भाई क्या मशवरा माने और वो ग्लूटावाइट केसन की खरीदें, ठीक है जनाब, जो बहुत जल्द आपको सांवलेपन से निकाल कर आपकी स्किन को प्यारा बना देगी। लेकिन अगर आपको छाइयों का पुराना मसला है तो फिर जाफरानी क्रीम आपको जरूर लेनी होगी।
आमिर अवान पाकिस्तानी हमें सुन रहे हैं जनाब, ग्लोबल एफएम 91 के लिसनर हैं और कहते हैं क्या बात है, अल्लाह को जान देनी है। शबरा उस्ताद जुल्फकार अंकल को सलाम, और कहते हैं कि अजी कहते हैं कि चाय का नाम लेते हैं तो हमारा हाथ सड़ जाता है यार, क्या ये तो टाइम ही चाय का होता है शहजादे, और फिर मैंने तुम्हें शहजादा कह दिया, क्यों मेरी जुबान आजकल लड़खड़ा जाती है, और वो भी खास बंदों के ऊपर लड़खड़ाती है यार। आमिर अवान पाकिस्तानी को अगर केसन की कदर होती ना तो उसके पास ग्लूटा वाइट होता। आमिर मेरी बात सुन रहे हो, कौन से इलाके में रहते हो, बनूचुंगी के एरिया में रहते हो, जैसे ही तुम्हारे पास 350 रुपये जमा हो ना तो आपने जाना है बनूचुंगी के ऊपर बलोच करियाना स्टोर है, वहाँ पर भी आपको ये ग्लूटा वाइट मिलेगी। साथ में कराची कॉस्मेटिक है, शकील भाई की शॉप है, सुबहान है, लाहौरी पीको है, गोहर है, इन सब के पास आपको हमारी ये ग्लूटा वाइट क्रीम मिलेगी, ज़रूर खरीदिएगा जनाब। और सांवले लड़के और लड़कियाँ तो भाई इस प्रोडक्ट को ज़रूर खरीदें और कम वक्त में अपनी स्किन को ब्राइटनेस की तरफ ले जाएं, और साथ में या तो फेस वॉश लेंगे या फिर आपने साबुन लेना है, अकेले तन तनहा जो है आपने क्रीम को इस्तेमाल नहीं करना। ये नहीं है कि अगर आप तन तनहा क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, नहीं आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर इसी के साथ अगर आप साबुन को साथ में इस्तेमाल करेंगे या फेस वॉश को इस्तेमाल करेंगे तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच जी। और अस्सलाम वालेकुम गड़ा शहबाज अब्दुल हादी सर पाशे आवाज दे ओके दी, चलो अच्छी बात जी, आवाज आपकी तरह ओके आ रही है। अब्दुल हादी ने हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया कि अब्दुल हादी भी हमें सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर खलील अवान, सलाम टू ऑल लिसनर्स, शबीर शबरा भाई, राजा गफूर को स्पेशल सलाम। अच्छा जी कहते हैं कि आजकल कॉल नहीं मिलती, अच्छा जी कॉल नहीं मिलती आपकी, कॉल नहीं मिलती, मेरी हाजिरी लगा लें, केसन ऑयल एंड शैम्पू बेमिसाल है, इनका बेहतरीन रिजल्ट है, जिसने आज तक यूज नहीं किया चेक कर लें, रिजल्ट जरूर मिलेगा। नजर हसन कच्ची काड़गढ़ से, सोप और फेस वॉश केसन ग्लूटा वाइट। जी जनाब ग्लूटा वाइट तो है, लेकिन हम जब प्रोग्राम करते हैं तो मैं हर तरह के लोग जनाब ज्वाइन करते हैं, तो नजर हसन जो है तारीफ कर रहे हैं केसन ऑयल केसन जोड़ी जनाब, वो प्रोडक्ट जिसे हमने जोड़ी का नाम दिया हुआ है उसे कहते हैं केसन जोड़ी, और केसन जोड़ी बोले तो जनाब केसन ऑयल और केसन शैम्पू को जब आप एक साथ खरीदते हैं तो आप समझते हैं कि आपके पास केसन की जोड़ी मौजूद है, और ये बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी जोड़ी है जनाब, ऑयल और शैम्पू की जोड़ी जो आपके बालों की निगहदाश्त करती है, और ऐसी निगहदाश्त कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर समझ आ जाती है कि भाई क्या जादू आया है मेरे बालों।

जी जनाब, ये हमारा केसन हेयर ऑयल जो कि आपके बालों के अंदर बिल्कुल यकीनी तौर पर जान डालता है, क्योंकि जनाब केसन हेयर ऑयल और केसन शैम्पू की जो जोड़ी है इनके अंदर जो अज्जा की तादाद है और जो इनका असर है वो आपको अपने बालों के अंदर मिलता है जोड़ी की सूरत में।